0: फिर मनु तुनाई दशमा पहा अनु तुनाई दशमा हाता लखांडे रेडियो आईटीएन सेबे श्रीलंकिया हांडे
1: विलाव पासरु तुनाई
2: विलाव ओपवेत किन्ह आवे
3: वार्ता पिट वार्ता तबने कोटि अटे एनएलबी ताना निधान ये लुटराईये प्रति संवर्धने तब तैनंत शक्तियक पेमिन ओबात दिन वार रटा दिन वटे ताना निधान ये बिल्डिंग के ओबात कोटि बजे कुवन

भावे शोक रोग भय अनतुरु अमनुष्य उपद्रव राजभय सुर सतुरु करतर गिनिबिय तिरिसंगत सतुन्गेन सितुवन सियलु उपद्रव दुरिं तुरुवे।